0: मैंने हमेशा माना है कि बिजनेस शॉर्टकट्स का खेल नहीं होता, ये निरंतरता और धैर्य से आगे बढ़ने का सफर होता है। जब हमने शुरुआत की थी तब कोई तय रास्ते या उदाहरण नहीं थे, सिर्फ दृढ़ विश्वास था, भारत की क्षमता पर अटूट आस्था थी और अपने मूल्यों पर भरोसा रखने का साहस था। मेरे लिए सफलता केवल उद्यम खड़े करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की बात थी कि भारतीय महत्वाकांक्षा दुनिया में कहीं भी गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है। वर्षों के दौरान उद्योग बदले, तकनीक विकसित हुई, पीढ़ियों ने जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन जो स्थिर रहा वो था सत्य के प्रति समर्पण, दीर्घकालिक सोच और संयम, वो जिम्मेदारी के साथ निर्माण करने का संकल्प। नेतृत्व नियंत्रण का नाम नहीं है, ये स्पष्टता का नाम है, लोगों को सशक्त बनाने का नाम है और ये समझने का नाम है कि कब धैर्यपूर्वक डटे रहना है। 100 वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है। महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना, उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना, उसे बनाने वाले व्यक्तियों से भी अधिक मजबूत बनाना। ये यात्रा के 100 वर्ष पूरे ही नहीं बल्कि शुरू हुए हैं।
1: Shortly, you will be reaching 100 years. My advance best wishes to all of you. But I would expect, and with that, I will end my observations. We remain young at 100 and remain young ever. Thank you, ladies and gentlemen. Jai.
0: SL Group आने वाले 100 वर्षों के लिए देश और मानवता की प्रगति और सेवा के लिए समर्पित रहेगा। जय हिंद।

चरय वेति चलना ही तेरी नियति, चरय वेति चलना ही तेरी नियति, चल चला चल चल कि लक्ष्य तेरा दूर है हौसला चलने का तो फिर क्यों खड़ा मजबूर है, नियति का खेल है विभाजन तेरा क्या कसूर है, चल बांध काल का चक्र पैरों में पकड़ अब रफ्तार नई, चरय वेति चलना ही तेरी नियति। सुन धड़कने बदलते वक्त की कर कोई तू कोशिश नहीं, आसान नहीं दिलों को जीतना आजमा ले अब तू राह नहीं, जमाना रोकेगा तुझे तेरे लक्ष्य से रुकना नहीं एक पल भी कभी, बिकाऊ नहीं है इस मुल्क की शान तू कर दे ये ऐलान अभी, चरय वेति चलना ही तेरी नियति। है जिस गणतंत्र का तू हासिल स्तंभ उसके तू मजबूत कर, देश के उज्जवल भविष्य का अपने हाथों से निर्माण कर, विज्ञान के अनुसंधान पर हर पल रहे तेरी नजर, कर दे पूरी तू दुनिया की हर आकांक्षाएं नई, चरय वेति चलना ही तेरी नियति। है बुला रहा राष्ट्र तेरा इसकी तू पुकार सुन, मानवता के कल्याण हेतु सार्थक सी कोई राह चुन, प्रगति की राह प्रशस्त कर छेड़ दे खुशियों की धुन, नई नस्ल है तैयार तेरी लेके एक उम्मीद नई, चरय वेति चलना ही तेरी नियति, चरय वेति चलना ही तेरी नियति, चरय वेति चलना ही तेरी नियति, चरय वेति चलना ही तेरी नियति।

0: The 21st of May marked the founding anniversary of the SL Group that was established way back in 1926. Here's a message from the chairman of the group, Dr. Subhash Chandra, as the group has completed 100 years. We'll leave you with this report. Thanks for watching.
1: मैंने हमेशा माना है कि बिजनेस शॉर्टकट्स का खेल नहीं होता, ये निरंतरता और धैर्य से आगे बढ़ने का सफर होता है। जब हमने शुरुआत की थी तब कोई तय रास्ते या उदाहरण नहीं थे, सिर्फ दृढ़ विश्वास था, भारत की क्षमता पर अटूट आस्था थी और अपने मूल्यों पर भरोसा रखने का साहस था। मेरे लिए सफलता केवल उद्यम खड़े करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की बात थी कि भारतीय महत्वाकांक्षा दुनिया में कहीं भी गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है। वर्षों के दौरान उद्योग बदले, तकनीक विकसित हुई, पीढ़ियों ने जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन जो स्थिर रहा वो था सत्य के प्रति समर्पण, दीर्घकालिक सोच और संयम, वो जिम्मेदारी के साथ निर्माण करने का संकल्प। नेतृत्व नियंत्रण का नाम नहीं है, ये स्पष्टता का नाम है, लोगों को सशक्त बनाने का नाम है और ये समझने का नाम है कि कब धैर्यपूर्वक डटे रहना है। 100 वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है। महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना, उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना, उसे बनाने वाले व्यक्तियों से भी अधिक मजबूत बनाना। ये यात्रा के 100 वर्ष पूरे ही नहीं बल्कि शुरू हुए हैं।
2: शॉर्टली यू विल बी रीचिंग 100 ईयर्स। माई एडवांस बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बट आई वुड एक्सपेक्ट एंड विद दैट आई विल लर्न माई ऑब्जर्वेशन। बी रिमेन यंग एट 100 एंड रिमेन यंग एवर। Thank you, ladies and gentlemen. Jai.
1: SL Group आने वाले 100 वर्षों के लिए देश और मानवता की प्रगति और सेवा के लिए समर्पित रहेगा। जय हिंद।

चराए वेती चलना ही तेरी नियति, चराए वेती चलना ही तेरी नियति। चल चला चल चल कि लक्ष्य तेरा दूर है हौसला चलने तो फिर क्यों खड़ा मजबूर है। नियति का खेल है विभाजन, तेरा क्या कसूर है। चल बांध काल का चक्र पैरों में, पकड़ अब रफ्तार नई। चराए वेती चलना ही तेरी नियति। सुन धड़कने बदलते वक्त की, कर कोई तू कोशिश नहीं। आसान नहीं दिलों को जीतना, आजमा ले अब तू राह नई। जमाना रोकेगा तुझे तेरे लक्ष्य से, रुकना नहीं एक पल भी कभी। बिकाऊ नहीं है इस मुल्क की शान, तू कर दे ये ऐलान अभी। चराए वेती चलना ही तेरी नियति। है जिस गणतंत्र का तू हासिल, स्तंभ उसके तू मजबूत कर। देश के उज्जवल भविष्य का अपने हाथों से निर्माण कर। विज्ञान के अनुसंधान पर हर पल रहे तेरी नजर। कर दे पूरी तू दुनिया की हर आकांक्षाएं नई। चराए वेती चलना ही तेरी नियति। है बुला रहा राष्ट्र तेरा, इसकी तू पुकार सुन। मानवता के कल्याण हेतु सार्थक सी कोई राह चुन। प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन। नई नस्ल है तैयार तेरी, लेके एक उम्मीद नई। चराए वेती चलना ही तेरी नियति। चराए वेती चलना ही तेरी नियति। चराए वेती चलना ही तेरी नियति। चराए वेती चलना ही तेरी।

0: because this object is not drifting quietly through deep space. It is hurtling straight through Earth's neighborhood. NASA and astronomers across the world are now tracking asteroid 2026 JH2, a newly discovered space rock that is making an extremely close pass by Earth on Monday. The asteroid was detected only around a week before its flyby, triggering urgent observations from multiple observatories. The asteroid is estimated to be between 50 and 115 feet wide, roughly the size of a school bus or even a basketball court. It will pass around 90,000 kilometers from Earth, that is far closer than the Moon. Scientists insist there is no impact threat, but the late discovery is once again exposing a frightening reality. Space remains full of blind spots. This is not the first time Earth gets surprised. In 2013, the Chelyabinsk meteor exploded over Russia without warning. The blast shattered windows across the city and injured more than 1,500 people. The object was detected too late because it approached from the sun's direction. Asteroid 2019 OK slipped past Earth at just 72,000 kilometers. Astronomers spotted it only one day before its close approach. That is why planetary defense is now becoming a global priority. NASA's DART mission already proved that humans can alter an asteroid's path by smashing a spacecraft into it and thereby saving us. Space agencies are now building faster detection systems, stronger tracking networks, and emergency response plans. Because one day, humanity may not get lucky. Bureau Report, Beyond World is One.
1: May 21st marks the founding anniversary of the SL Group, established in 1926. Here's a message from the chairman of the group, Dr. Subhash Chandra, as the group completes 100 years.
2: Maine hamesha mana hai ki business shortcuts ka khel nahi hota. Ye nirantarta aur dhairya se aage badhne ka safar hota hai. Jab हमने शुरुआत की थी तब कोई तय रास्ते या उदाहरण नहीं थे, सिर्फ दृढ़ विश्वास था, भारत की क्षमता पर अटूट आस्था थी और अपने मूल्यों पर भरोसा रखने का साहस था। मेरे लिए सफलता केवल उद्यम खड़े करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की बात थी कि भारतीय महत्वाकांक्षा दुनिया में कहीं भी गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है। वर्षों के दौरान उद्योग बदले, तकनीक विकसित हुई, पीढ़ियों ने जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन जो स्थिर रहा वो था सत्य के प्रति समर्पण, दीर्घकालिक सोच और संयम, वो जिम्मेदारी के साथ निर्माण करने का संकल्प। नेतृत्व नियंत्रण का नाम नहीं है, ये स्पष्टता का नाम है, लोगों को सशक्त बनाने का नाम है और ये समझने का नाम है कि कब धैर्य पूर्वक डटे रहना है। 100 वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है। महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना, उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना, उसे बनाने वाले व्यक्तियों से भी अधिक मजबूत बनाना। ये यात्रा के 100 वर्ष पूरे ही नहीं बल्कि शुरू हुए हैं।
3: Shortly, you will be reaching 100 years. My advance best wishes to all of you. But I would expect, and with that, I will end my observations. We remain young at 100 and remain young ever. Thank you, ladies and gentlemen. Jai.
2: SL Group आने वाले 100 वर्षों के लिए देश और मानवता की प्रगति और सेवा के लिए समर्पित रहेगा। जय हिंद।

जीतना, आजमा ले अब तू राह नई, जमाना रोकेगा तुझे तेरे लक्ष्य से, रुकना नहीं एक पल भी कभी, बिकाऊ नहीं है इस मुल्क की शान, तू कर दे ये ऐलान अभी, चरै वेति चलना ही तेरी नियति। है जिस गणतंत्र का तू हासिल, स्तंभ उसके तू मजबूत कर, देश के उज्जवल भविष्य का अपने हाथों से निर्माण कर, विज्ञान के अनुसंधान पर हर पल रहे तेरी नजर, कर दे पूरी तू दुनिया की हर आकांक्षाएं नई, चरै वेति चलना ही तेरी नियति। है बुला रहा राष्ट्र तेरा, इसकी तू पुकार सुन, मानवता के कल्याण हेतु सार्थक सी कोई राह चुन, प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन, नई नस्ल है तैयार तेरी, लेके एक उम्मीद नई, चरै वेति चलना ही तेरी नियति, चरै वेति चलना ही तेरी नियति, चरै वेति चलना ही तेरी नियति, चरै वेति चलना ही तेरी नियति।